0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा।

0: और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइल्स थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: শুনতে হিন্দিরে সম্বাদ রিলে করে প্রচার কলু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র আকাশবাণী সম্বলপুর আরম্ভ করছু ভক্তি সঙ্গীতর কার্যক্রম বন্দনা কার্যক্রম আরম্ভে শুণত এই গীতটি দুর্গামাতা পণ্ডা রচনার কণ্ঠদান করছেন বৈষ্ণবচরণ পাঢ়ী।

0: इतना प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: इतना प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून, ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए योग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधान
3: 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
5: पीएम किसान।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
8: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
7: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
7: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।

0: सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek

0: भवभास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भुज पञ्चवक्रं। हे हिमालयवासी गणेश जहांक पुत्र गरल पान जोगु नीलवर्ण गला जे वृषभ आहरण करिछंती जहांक रूप अखलनीय जे संसारर शोभित भस्म द्वारा अंगभूषित पत्नी रूपरे भवानी पार्वती सन्निवेशित एभलिया शिवंकु मुँ वंदना करुछि। संबलपुर प्रसिद्ध शीतलषष्ठी यात्रा 2026 रो प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी देवाई मुझे ये बूथ नंबर दुई रे डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक मो सहित अच्छा उद्घोषक डॉक्टर श्याम भोई एवं डॉक्टर गौरीदास प्रधान। बूथ नंबर एक रे जो माने नंदपड़ार बालुंकेश्वर बाबांकर जुगल मूर्ति दर्शन शोभायात्रार धारा बरणी प्रदान करने अच्छा से माने हेले डॉक्टर श्याम सुंदर धर डॉक्टर मनोज कुमार पंडा एवं डॉक्टर सुजित पुसेट। यात्रा ए सुधा आरंभ होना सकाळ 5टा पर्यंत यात्रा चली वर्तमान किसी समय अतिक्रांत परे किसी विश्राम परे पुणी थरे वेशभूषा हो जेतेबेले कलाकार माने आसी रथारूढ़ हेबे तापरे जाए ए यात्रा पुनराय आरंभ हबो। देखिबा को पाउची जे झाड़वा पड़ार श्री लोकनाथ बाबांकर ए जो जुगल मूर्ति दर्शन यात्रा मंदिर लेउटाणी यात्रा जहाँ को कहचु आम से यात्रार प्रायत 15-17 मनोरंजक उपादान आम पाखर अतिक्रांत हो तथापि आहरी अनेक नृत्य गीत संगीत बाकी रही तेणु आपण मान को आम कलाकार मानक नृत्य संपर्क महाप्रभुंकर वेशभूषा संपर्क एवं ए यात्रा संपर्क अति सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरणी प्रदान करिबु। वर्तमान मु माइक्रोफोन प्रदान करुची मोर साथी उद्घोषक डॉक्टर श्याम भईंक।
1: धन्यवाद डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक महोदय। ओं त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुख्यमामृतात् हरि ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। संस्कृतिर प्राणकेन्द्र सम्बलभूमि सम्बलपुर सहरर पावन पवित्र शीतलषष्ठी यात्रार महार्घ अवसररे देवदेव महादेव एवं जगज्जननी माता पार्वतींकर पदारबिंदरे भक्तिपूर्ण प्रणिपात पूर्वक आकाशवाणी सम्बलपुर केन्द्र तरफ आयोजित शीतलषष्ठी यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी कार्यक्रम को समस्त श्रद्धाळु श्रोताबंधु को स्वागत करने सहित अभिनंदन शुभेच्छा और आंतरिक नमस्कार जनाऊँ उद्घोषक मु अध्यापक श्याम भोई। विधिपूर्वक महादेव पूजार्चना कले समस्त प्रकार महापाप मनीष समाज दूरीभूत होता अध्यात्मवादी प्रति मनीषर यह हूँ महत्तर उपलब्धि। कुष्ठ रोगी नरहत्याकारी बाड़ हत्याकारी गोहत्याकारी माने महापापुर मुक्ति लाभ करने निज निजर प्रायश्चित सकाशे शिव पूजा करी उदात्त कंठरे जमी गान करी सबु मंदिर जड़े सिना दीप।

0: तो मंदिर महादीप सबु देवदेवी पाप धोई देवे तु धोईबु महापाप। उत्कड़मणि पंडित गोपबंधु दास शिवरात्रि कवितार लिखुंट मनीष जीवन में प्रत्येक रात्रि जे शिवरात्रि यह मर्मे मर्मे उपलब्धि करी हुए गभीर भाव हृदय कबीला से तब बहि प्रेम झर विजय करिछंती तहि स्वयंभु शंकर आपणा आपणा हृदय कपिड़ासरे स्वयंभू शंकर जे विराजमान करिछंती एही भाव आम समस्त भितर उजाग्रत होगा बांछनीय। संबलपुर सहर कथा जदि आम आलोचना करवा समग्र ओडिशा रे एही पवित्र शीतल षष्ठी यात्रार शुभारंभ होता एही संबल भूमि पवित्र माटी संबलपुर ठारे। पश्चिम ओडिशार संबलपुर सहर हेउछे सांस्कृतिक प्राण केन्द्र शाक्त शैव और वैष्णव धर्मर मधुर समन्वय ए पवित्र पीठर एक बड़ विशेषत्व। महानदी कूल गढ़ी उठिता ए सहर रे विभिन्न शिवालय रे भगवान शंकर ब्रह्मपुरा मंदिर समेत अन्यान्य मंदिर रे प्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र और देवी सुभद्रा तथा संबलपुर अधिष्ठात्री देवी करुणामयी माँ समलेश्वरी समलेश्वरी मंदिर रे पूजा पाउछंती। समय स्वरे ए सहर नाना परिवर्तन होई बहु भाव यार कड़ेबर वृद्धि प्राप्त होड़शा तथा भारत बर्षर विभिन्न अंचल लोके अतिशय आग्रह सहित आसी एक पवित्र भूमि रे गृह निर्माण पूर्वक एठाकार स्थायी बासिंदा हो जाती। शीतल षष्ठी जात्रा संबलपुर सहर सबुठू महार्घ और श्रेष्ठ पर्व। यही यात्रा समय सहरटी सुंदर कर निजक सजाई थाए माँ समलेश्वरी मंदिर परिसर उन्नतीकरण तथा आलोक सज्जा वर्तमान समय एक बड़ उपलब्धि। समलेश्वरी परिक्रमा प्रकल्पर कार्य शेष होगा यही पवित्र पीठ बहु धार्मिक व्यक्ति विशेषों पर अनन्य आकर्षण केन्द्रबिंदु पलटि। इतिम्य सहर सौंदर्यकरण महानदी उपर द्वितीय सेतु निर्मित होती चर्च छक निकटवर्ती धूतरापड़ा ठार कचेरी छक पर्यंत फ्लाईओवर निर्माण कार्य शेष होगा सहित दुर्गापाली ठार लक्ष्मीडुंगरी आड़क जावा सकाशे रेलधारणा उपर फ्लाईओवर निर्मित हो लोकार्पित होती। तत्संगे संगे टांगरपाली रेलवे ब्रिज निकटर वैंठापाली छक बरेपाली पर्यंत दीर्घ फ्लाईओवर निर्माण कार्य क्षिप्र गति में आगे चली सहित सहर भितर रास्ता गुड़िक सुचिक्कण होगा सहित सेगुड़िकर सौंदर्यकरण जथेष ध्यान दि जाएगी। सर्वोपरि संबलपुर सहर सामग्रिक विकास बाहर लोक बहु भाव आकर्षित कर यात्रार परवर्ती धारा बरणी प्रदान करने मुझी उद्घोषक डॉक्टर गौरीदास प्रधान को माइक्रोफोन हस्तांतर कर।
1: धन्यवाद सर। जस्यं केच विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधु गले च गरलं जस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। जहांक कोळरे हिमाचल सुता पार्वती मस्तकरे गंगा ललाटरे द्वितीया चंद्रमा कंठरे हलाहल विष और बक्षस्थलरे सर्पराज अनंत से ही भस्म विभूषित देवश्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता भक्त पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्र सम शुभ्र वर्ण श्री शंकर सर्वदा रक्षा करंतु। 2026 शीतल षष्ठी यात्रा ए माटी पाई मानव जाति पाई परमानंदर अनुभव देऊ। सुपर एलनिनो पाई समग्र पृथ्वी आतंकित होउथिबा बेले सही एलिनोर संहारकारी शक्ति को सहिबा पाई ए यात्रा आमको सक्षम करू। धीरे धीरे उत्तप्त हो जाऊथिबा पृथ्वी को शीतल करिबार शिव संकल्प देउ। शिव पार्वती को मिलन महोत्सव विश्ववासी को मिलमिशि रहिबार मंत्र देउ। एही प्रार्थना सह संबलपुर आकाशवाणी माध्यम रे शीतल षष्ठी यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बरणी शुणुथिबा समस्त श्रोता को आमे जोडुछु ये माटी सह ये माहौल सह जेपरी शीतलष्ठी जोड़े माता पार्वती को एक परिवार सह देवदेव महादेव को मनीष मानक सह पुराण प्रसंग को सामाजिक प्रसंग सह वैदिक रीतिनीति को लौकिक रीतिनीति सह अतीत को वर्तमान सह से हीपरी आमे जोड़ू।

0: କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷର ମିଳନ, ଭୌତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଓ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ମିଳନ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଓ ଧରତ୍ରୀର ମିଳନ ତଥା ସର୍ବୋପରି ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ମିଳନର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭବନରେ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳିତ ହୁଏ ବୋଲି ଶୈବାଗମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, କୃଷିଭିତ୍ତିକ, ଧର୍ମତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଯୌଗିକ ଓ ଜନମଙ୍ଗଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବର ବିଶ୍ୱ ଏକାତ୍ମବୋଧର ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ନିହିତ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ସମନ୍ୱୟ ଓ ସଂହତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସବୁ ଯୁଗରେ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଆକାଂକ୍ଷା ନିହିତ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଅଭିଳାଷ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଆକାଂକ୍ଷାର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ନିରୁପମ ତଥା ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ। ବନ୍ଦେ ଦେବ ମୁମାପତି ସୁରଗୁରୁମ୍, ବନ୍ଦେ ଜଗତ୍ କାରଣମ୍, ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣଗଭୂଷଣମ୍ ମୃଗଧରମ୍, ବନ୍ଦେ ପଶୁନାମ୍ ପତିମ୍, ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବହ୍ନିନୟନମ୍, ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟମ୍, ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତ ଜନାଶ୍ରୟମ୍ ଚ ବରଦମ୍, ବନ୍ଦେ ଶିବଶଙ୍କରମ୍, ବନ୍ଦେ ଶିବଶଙ୍କରମ୍। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କଳସ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଘୁମୁରା ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଦଳ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ର ଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମୁଖରିତ କରିଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାଥୀ ଉଦ୍ଘୋଷକ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
1: ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସର କ୍ରମଶଃ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସତେ ଯେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ବିଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଲୋକମାନେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନବଯୌବନ ରୂପକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଇ ଆଖିରେ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି ସକଳ ଦର୍ଶକ, ସକଳ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ତପ୍ତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଶୀତଳ କରିବା ଆଜି ଏ ମହାର୍କ ପର୍ବର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅଟେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କୁନି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନେ। କେମିତି ଗୋଟେ ପଶି ଆସିଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ, ତାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଅଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିକିରି ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରମଶଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଏବେ ସେଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ରଥ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। मेड़ मान जो मैंने मेड़ गुड़ाक जो थिला से टॉम एंड जेरी एवं आउ कौन सब मेड़ सब आग को पलि गले आज जो शीतल तो ये ये ग्रीष्म को कार भ्रुक्षेप ना जो तप्त परिवेश को कार भ्रुक्षेप ना समस्ते अन रही केमी दर्शन करेंगे शिव पार्वती माँ पार्वती एवं भगवान शंकर को केमी दर्शन करेंगे से जीवन सकल पीड़ा दूर हो से आत्मा को शीतलता देवे प्रख्यात कवि राधामोहन कर्णा गोटे कविता गाँव गोटे कवित अच्छी तुन्न गतिर हिल्लले आज पूर्ण बड़े धाई आसी अच्छी मो सुमी मुई धरणी परे धरणी मरतरे डरणी मतरे मर्त जीव रुद्र सिन्हा मूर्ति मोहर मुई तो शिव रुद्र सिन्हा मोर मूर्ति किंतु मु शिव मु मंगल दाई मु केवल मंगल प्रदान करे धरित्री को आज से मंगल प्रदान करतुवा से शीतलता प्रदान करतुवा से भगवान शंकर एवं माता पार्वती जो जुगल मूर्ति आज आज आम सम्मुखे आसबे एवं ये लोक मान शत्रुष्ण शत्रुत्व प्राण को तृप्त करेंगे लोक मैंने जीवन को चरितार्थ करेंगे जो आम से जो जो शंकराचार्य जो कही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये जो जीवन चक्र जावतीय लीला खेला परे यही दर्शन परे शिव पार्वती जुगल मिलन दर्शन परे जमी से माने उद्धार पाइबे एवं यही चक्ररु से आज शत्रुष्ण नयन अन रही परवर्ती धारा बरणी प्रदान करने मोर साथी उद्घोषक डॉक्टर सुजीत पुष्ट को अर्पण कर
2: आकाशवाणी संबलपुर तरफ रु जो आयोजित होती शीतष्ठी जात्रार प्रत्यक्ष व्यवस्था धा बरणी आपण मैंने शुणी पारे आम मंच तले किसी नृत्यरत युवक एवं किसी शिशुकर जो बाद्य नृत्य ताल एवं जो नृत्य ताले ताले जो संगीतर जो मूर्छना एवं समग्र मनीष समाज आज शिव एवं पार्वती जुगल मूर्ति दर्शन करिवार से आनंद विभोर हो मन भितर तार उत्साह मन भितर तार अनेक अश्रुमारी उल्लास आ सब गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे से खुशी उल्लास आध्यात्मिकता एवं धर्म को नहीं लोक संस्कृति समाहार जो अनन्य समन्वय ताकू से देखा आसी आम सामने एवं आम देख पारु जे सुदूर कलाहांडी आसी जो घुमरा नृत्यर किसी कलाकार एवं से प्रस्तुति होती नृत्य परिवर्षण करने घुमरा हूँ वीरवाद्य एवं वीरवाद्य शिवंर जिते बरातर गमन करे से समस्ते बरजात्री जाती बाद्यटा बाजि थाए एवं शीतल षष्ठ गुरुत्वपूर्ण कथाटे हूँ जे आम लोक संस्कृति लोकाचारर प्रतिफलन शीतल षष्ठी छत्रे छत्रे देखा मिले जमीती जितेबले शीत शिवंक विवाह प्रस्ताव नहीं नृसिंह निताटा हुए पतर पेंडी हुए जे पतर पेंडी हूँ आम अंचल में मिलूता शाल पत्र को लेकर गोटे पेंडी दि जाए गुआ गुंडा करा जाए जमी साधारण मनीष बाहागर बेले गुआ गुंडा दि जाए निमंत्रण दि जाए तेणु शिवं बहुत से पवित्र से पावन एवं शिवंर बहुत माता पार्वती संग हवा अत्यंत गोटे मार्ग बेला गोटे अत्यंत गोटे समग्र मनीष समाज कल्याण पाई जमी उत्कंठित तेणु जितेबले शिव निजर बराती नहीं जाती कन्या पक्षर कन्या माता से शिव को लोकाचारे जो पानपत्र गाल को सेकती सेटा जना पड़े जे संबलपुर अंचल जो लोक संस्कृति जे जे निज घर को आसी जे बाहा को आसी बर बर को समाने सम्मान जनाती बर को समाने संस्कृति सहित आगमन करती पाछटे निानपत्र गाल सेकते परवर्त समय आम देखीचु जितेबले कन्या को समाने आणती बर अपेक्षा करती बेदी रे तेणु कन्या पितांकर जो मनोभाव थाए जड़े ओडिया कवि श्रेष्ठ कवि लेखुचंते जितेले कन्या होती पार्वती एवं कन्या को देखापी बर पक्षर समस्ते आतुर होती कन्या पक्षर को अनुमति दि जाऊर जो आभूषण दे बेदी को अणा जाऊ तेणु ओडिया कवि लेखुचंते विभूषण पुष्पे जाकांती जान विभूषण कर कन्या को आण अर्थात जो कन्यार कांती कौन सी विभूषण दरकार नहीं हिसाब से अणा जाऊ परवर्त समय से कन्या को सज्जित कर बरफ सम्मुखें प्रस्तुत कराऊ समस्ते देखिंट शीतलष्ठी यही लोक संस्कृतिर परिचय मत देखा मिले कन्या घर कन्या पिता कन्या माता एवं कन्या परिवार समस्ते संपर्क एमाने समस्ते उत्कंठित उत्साहित हो कन्या को जड़े साधारण कन्या भाव सुसज्जित करी बर जी शिव सामने प्रस्तुत करते लोकनीति लोक रीति लोक आचार विवाह संपन्न हुए से संपन्न हो जाए गोटे लोकाचार संस्कृतिर गोटे महामिलन हुए आम आध्यात्मिकता सहित तेणु ये गुरुत्वपूर्ण कथा है शीतलष्ठी जे भगवान जी निज भक्त निज को धरापृष्ठ से अवतरण करते एवं लोक संस्कृति से समागम हो जाती लोकों मध्य से एक हो जाती भक्त एवं भगवान जो अनन्य मिलनटा तार प्रतिफलन रहे शीतलष्ठी जात्रा रे आज आम आम सामने देखिपुँ जे आम सामने जमी भिड़ बढ़ी चली लोकर भर उल्लास खेली बुलू आनंदर गोटे लहरीटे खेल आम देखिपु अनुभव करूँ एवं आम सामने किसी बिकाली अच्छा जड़े बिकाली बिकुंटर बंशी एवं ते मत बिकुंट किसी बेलून एवं समग्र जो परेशी ताको गोटे आम जीवन दर्शन रोटे से प्रतिफलन करुच्चे जे जीवनटा गोटे बेलून भाया किंतु से जीवन रे मध्य किसी संगीत रंशीर ध्वन रार आशीर्वाद प्राप्त हे शिव द्वारा माता पार्वती द्वारा तेणु मनीष को से समग्र भाव में सचेतन करदे मनीष जीवन केवल कंटकित नुहे केवल कष्ट जीवन नुहे मनीष जीवन में संगीत अच्छी मूर्छना अच्छी जदिव मनीष जीवन पा फोटका पड़ी तेणु मनीष जीवन साधारण मनीष तार जीवन जात्रा से अयम आरंभ कर जीवन जात्रा को से बजाय रखिब जीवन जात्रा रे से सब अग्रगति नेबो एवं तार सब पृष्ठभूमि रहिबे विभु कृपा तार कर्म एवं सब गुरुत्वपूर्ण कथा है से विभु प्रति समर्पित रहिबो एवं जोटा आम गीतारे मध्य कहा जाउछि जे निष्काम कर्म से करिबो तेणु आज शीतलष्ठी रे आम केवल तत्व कथा होना तत्व को नुजे संस्कृतिर महामिलनटा होइछि एवं लोक संस्कृति लोकाचार माध्यम रे सब बड़े मनीष समाज को सचेतन कर दि जाउछि से अन्य संस्कृति सेटा है शीतलष्ठी एवं आम सामने किसी कलाकार से चित्र विचित्र लोकंर मनोरंजन आग को बढ़ुंट से ओडिशार गोटे संस्कृति हूँ आदिवासी संस्कृति तार प्रतिफलन ये घटी एवं परवर्ती समय जो धारा बरणी प्रत्यक्ष धारा बरणी आपण मैंने पुनश्च शुणीपर गोटे विज्ञापन पर
3: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
4: महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति सदा सर्वदा सचेतन महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत प्रमुख कोयला खनन कंपनी एवं समाज दुर्बल श्रेणी लोकों उन्नति निम्ते अहरह कार्यरत शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्रीडार विकास सहित परिवेश प्रति सदा सर्वदा जाग्रत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
3: देशर सामग्रिक विकास रे निजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाइबारे प्रतिश्रुतिबद्ध महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
4: परिवेश प्रदूषण को रोकिबा दिगरे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सदा सर्वदा कार्यरत
3: कोयला उत्पादन प्रत्येक पर्याय पारिपार्श्विक परिवेशर जेपरी क्षति न हेबो तथा परिवेश प्रदूषित न हेबो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सेथिपाई सर्वदा चेष्टित
4: आमर परवर्ती पीढ़ी पाई एक सुस्थ परिवेश संपन्न पृथ्वी छाड़ जिबा एमसीएल रो लक्ष्य आउ ए दिगरे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड रो समस्त कर्मचारी सतत चेष्टित
3: परिवेशर प्रकृत बंधु महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
5: नृत्य गीतरे गगन पवन मुखरित होई उठुची समग्र संबलपुर शहर आग जत नंदपड़ा और झाड़पड़ा दुईट पड़ा शीतलष्ठी यात्रा आयोजन करुले सान सड़क और बड़ सड़क कुंजलपड़ा को धरी ये गोटे राउंड परिधि यह पृथ्वी बोली कलना करा को पृथ्वी प्रदक्षिण बोली कहला जेहेतु शिव पार्वती बाहापर से मैंने पृथ्वी प्रदक्षिण कर भक्त मानक दर्शन देते बड़े नर किन्नर देव दानव पशुपक्षी समस्ते साथी कारण नटराज निजे हूँ शिव से जड़े नृत्यप्रिय लोक नृत्यप्रिय समस्त देवदेवी मानक शिव ही श्रेष्ठ नृत्यशिल्पी अटे से हूँ नृत्यर देवता ଏବଂ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ

0: नृत्य प्रदर्शन करछंती एवं दर्शक माने सेमानकर नृत्य भंगी को देखि सेमान समस्त आमोदित होछंती एवं कलाकार यही तो हूँ शीतलषष्ठी यात्रार मुख्य आकर्षण एथपाय शीतलषष्ठी यात्रार एत बड़ आयोजन कलाकार मानकर महासंगम हजार हजार संख्यक कलाकार ए शीतलषष्ठी यात्रा सामिल होती देवदेव महादेव को एवं माता पार्वती को दर्शन करी मुख्य प्राप्ति उद्देश्य रे ए भक्तवृंद समावेश घटू वर्तमान राजरास्ता उछुड़ी पड़ू एवं बाद्यरोल रे प्रकंपित होती गगन पवन मुखरित हो जाऊँगी कलाकार मान अपूर्व नृत्य भंगी एवं गोटे आध्यात्मिक परिवेश रे समस्त विभोर वर्तमान मो परवर्ती धारा बिवरणी प्रदान करने मो साथी उद्घोषक डॉक्टर मनोज पंडा को माइक प्रदान करुच्छे
1: कहार खातिर नहीं ए रौद्र को ए कोलाहल को ए भीड़ को ए परिवर्तित परिवेश जो प्रभाव को सभे भी हबी अपेक्षा माण सभी अपेक्षा माण ए जीवन सकल पाप तापरु मुक्ति पाई थरे दर्शन करिवे मन खोली सभी दर्शन करिवे मन खोली अबाल बुद्ध बोलिता सभींकर गोटे लक्ष्य भाग्य रे थिला बोली ए दर्शन प्राप्त हो आज पुणी आर वर्ष को ए पवित्र जुगल मूर्ति को हृदय धारण करिवु सकल पाप तापर मुक्ति पाई शिव होम अनुभव पाई थरे दर्शन करिवु ए जुगल मूर्ति को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सदा शिव भवानी आम हृदय अवस्थान करंतु ए जुगल मूर्ति आम सम्मुख को आसंतु थरे मात्र दर्शन करिवु सकल पाप तापर मुक्ति पाई थरे दर्शन करिवु जीवन अमर कृतार्थ हब ए जन्म सार्थक हब सफल हब आज सम्बलपुर ए जो संस्कृति बंत प्राचीन माटी रे ए जीवन साधना आज सफल हब यही आशा आकांक्षा नहीं अबाल बुद्ध बनिता सभी अपेक्षा मान आम अनुभव करुचु से आराध्य को हृदय धारण करिवे बोली सभी प्रत्यक्षा मान समस्त गोटे लक्ष्य आम सम्मुखे बिहु नृत्य परेषण कर सुदूर आसाम रु आसी जो कलाकार मैंने ये सुंदर सुंदर बेश पोशाक सज्जित बिहु नृत्य जुगल मूर्ति नवजौवन मूर्ति से शिव पार्वती माँ भगवती माँ पार्वती एवं भगवान शंकर मूर्ति आसवे केत भी अटकी जीव जीवन अर्चक सगड़ अर्चक गड़ी गड़ी जाए थाम बोली कह के बेले भी अटकी जीव अंत ए दर्शन ए पुण्यर फल ए जन्मर जो के पुण्यर फल अंत आज सफल हब यही आशा आकांक्षा सकल दर्शक मैने शत्रुष्ण नयन अपेक्षा कर नमो शिवाभ्यम नमो जोवनाभ्यम परस्पर लिंगित नमो विग्रहाभ्यम नगेन्द्र कन्या वृषकेतिनाभ्यम नमो नम शंकर पार्वती भ्याम से शिव एवं पार्वती नमो नमो कोटि कोटि प्रणाम से मैंने आसवे प्रत्यक्ष करू कोटि जन्मर केते जन्मर तपस्या पुण्य फल प्राप्त हेब आउ थे पुणी केबे दर्शन करू के जानी एवं ए जो नृत्य गीत ए जो महाउत्सव ए जो सकल उत्सवमय जो परिवेश जहाँ से मुख्य जो आमर पुण्य फल प्रदान करुवा से देवदंपति जहाँ को दर्शन करी आज आम आम जीवन को चरितार्थ करू यही आशा नहीं सभी प्रतीक्षा मान मु वर्तमान माइक्रोफोन मोर परवर्ती उद्घोषक को प्रदान करुच्ची सुजित कुमार
2: बर्तमान सम्बलपुर शीतलषष्ठी आम सामने जोटा आम देख पारु आसाम बिहु नृत्य समस्ते विभोर एवं आसाम सहित ओडिशार गोटे सांस्कृतिक

आध्यात्मिक संपर्क अच्छे संबलपुर सहित आसाम साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ये पीर बाबा छक अल्प दूर से साहित्य कुटीर साधना गृह रहीक पखापाखि 18 वर्ष से आसाम साहित्य को वृद्धिमंत करते संबलपुर माटी होची समन्वयर माटी संघतिर माटी एवं सांस्कृतिक समन्वयर माटी आम सामने जो बिहू नृत्यटा परेषण होता अत्यंत चिताकर्षक मनमुग्धकर एवं समग्र जिते दर्शक अच्छा से विभोर कर रखी ओडिशा माटी टाणी आनी सुदूर आसामु शंकर देव को शंकर देव देखी ओडिशार जो भागवत टुंगी गाँ गाँव भागवत टुंगी जोटा परवर्ती समय आसाम नामघर भाव प्रतिष्ठित होता तेणु ओडिशा माटी संबलपुर माटी ओडिशा एवं आसाम जो सांस्कृतिक सेतु भाव काम कर आज शीतलष्ठी अवसर में आम सामने जो परेषित होहू नृत्यटी एसाम जनजीवन रो रंगीन कपड़ा रंगीन मेखला सामने पिंधती आम संबलपुरी बांध कला को तार समन्वय अच्छी आम संबलपुरी नृत्यर बिहू नृत्यर सामंजस्य रही आम सामने जो नृत्य परेषण होती समस्ते विभोर होती आसाम जो शक्तिपीठटी अच्छी आसाम कामाख्या देवी शक्तिपीठ एवं संबलपुर माटी हूँ समलेश्वरी पीठ एवं आज माता जी आदिशक्ति सी पार्वती तांकर बाहागर एवं जगत देवता सी महादेव तांकर बाहागर आज से बाहागर उत्सव में आज आसाम एवं ओडिशा माटीर जो सांस्कृतिक समन्वय सांस्कृतिक सम्बन्धटे घनीभूत होती तारी परिप्रकाश संबलपुर शीतलष्ठी में देखा मिलू आज संबलपुर शीतलष्ठी भारत बर्षे निजर गोटे अन्य परिचय सृष्टि करेठे बहुत संस्कृतिर समाहार हुए बहुत सांस्कृतिक विभवर गोटे आदान प्रदान हुए लोक संस्कृति लोक मानक भावर आदान प्रदान हुए भावर आदान प्रदान हेले जो शीतलष्ठी जो महत उद्देश्यटे अच्छी समग्र मनीष समाज कल्याण हे समग्र मनीष समाज जो कल्याण टी समग्र मनीष समाज पाखे पहुँची पार तेणु केवल यहाँ गोटे सांस्कृतिक परिचय नुह केवल गोटे आध्यात्मिक धारा नुह केवल गोटे धार्मिक शोभा नुह मनीष सहित मनीष को मिसेबार संस्कृत संस्कृति सहित मिसेबार एवं समस्त को नहीं आग को बढ़िबार जो विविधता मध्य एकता भारतर मूलमंत्र रेखांकित करुच्ची तेणु आज प्रासंगिक रही शीतलष्ठीर जे यही यात्रा आहरी प्रासंगिक रही जो जात्रारे विविधता रो जात्रा मध्य विविधतार भितर जो एकतार जो मंत्री अच्छी आहरी प्रकटित हे आहरी उजागर हे आज शीतलष्ठी जात्रार परिचय ओडिशा बाहर आसाम हो केरल हो पंजाब हो अन्य राज्य हो आहरी प्रस्फुटित प्रचारित प्रसारित हो जे ओडिशार अनन्य माटी संबलपुर माटी रे एमती गोटे अनन्य यात्रा अनुषित हुए जोटी भक्त एवं देवतांका भितर अनन्य मिलनटा हुए संस्कृत मध्य संस्कृति संस्कृत मध्य भाव विनिमय हुए एवं ता मनीष भितर गोटे भाईचारा सृष्टि करे जोटा समाज रे संगति सृष्टि करे समाज रे संगति सृष्टि हेले प्रगति बजाय रहे एवं मनीष समाज रे लोक कल्याण अग्रगति निए तेणु आज जो आम सकु आलोचना करुले समग्र देव देवता जो देव से महादेव एवं से लोकनाथ एवं लोकनाथं जो लोकाचार आज बहुत रही माता से हेले कल्याणमयी पार्वती सामान एकम्र उद्देश्य हूँ जुगलमूर्ति आज समस्त को दर्शन देवे जुगलमूर्ति से भव्य एवं दिव्य यात्रा मध्यम से कल्याण को वर्षा भाव समस्त पाखे पहुँचे समग्र मनीष समाज से आप्लुत हबो से प्लावित हबो से आशीर्वाद रे से करुणा रे एवं से देव देवंकर देव महादेवंकर परम आशीर्वाद रे एवं कल्याणमयी माता पार्वतींकर आशीर्वाद रे तेणु आज शीतलष्ठी यात्रा टी केवल गोटे सहर यात्रा नुह गोटे अंचल यात्रा नुह समग्र मानव समाज पाई गोटे अनन्य यात्रा जो यात्रा टी होची सांस्कृतिक एवं धर्म आध्यात्मिकता एवं लोक संस्कृति एवं लोक कल्याण को बहुमुखी भाव कर उद्देश्य नहीं गोटे अनन्य भव्य एवं दिव्य यात्रा एथिरे समस्ते सम्मुखीन होती समस्ते सम्मिलित होती देवों ठारु नर पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है।

0: मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरण जी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित

0: करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: कार्यक्रम लिखरी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आकाशवाणी कटक आम परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणीपर यह विज्ञापन पर
6: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
7: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
6: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
7: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
6: सबुरी भाषा रे केवल आकाशवाणी।

0: बहुत बढ़िया लग गया। इन्ना उनटा बढ़िया गीत उनटा भी पार कर निम्हे गीतु अगली दिन भी हम मंच काज कमी कार्यक्रम नु और इन्ना भी मना दम निन अगली थोड़ा भी निम थोड़े हमने बार्च काज कर इतरो भी बार्च कर और उनटा सुजोग चीज कर हमने नाम है जितकी भी भाई बहनी कुटिया रतलनार नाम ये कार्यक्रम मेनालनार ने नाम कुहती फसा आहल दात आर भी ये कार्यक्रम एक्का निकरी शामिल बनर आउ तमें उनटा इन सहभागिता रो ये कार्यक्रम बदे जनता करी अगली अगली को ये कार्यक्रम जदि आग्री करा हले नामे भाषानु नाम काच नेखरत नामे भाषा उज्ज नामे संस्कृति पद उज्ज आउ नामे जेन उनटा परिचय तिली जे नाम कुणात नाम नामे उनटा अलग स्वतंत्र उनटा परिचय तिली आबन ही अगली अगली होत आगे लगन तमी भी उनटा वाड़ेटे अवदान रो ई आशा निश्चित भावे नानत आउ निम इन्ना बार्चकार निमान इन्ना आकाशवाणी तारती अशीष अशीष धन्यवाद जुहार
1: जुहार क्या जुहार।
0: इन्नता मक्का पुपू झका झका कार्यक्रम बन ईशान मुंजत फेर खाए जेतेरिन जुहार।

0: चासिंग को पाई अनन्य पदक्षेप और योजना अपनेछंती लोकों को सरकार चासिंग को समृद्धि पाई समृद्ध कृषक योजना सीएम किसान कृषि उद्योग और कामधेनु योजना देछि नूतन शक्ति और नूतन सुजोग
1: समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौनी मानन को वर्धित हार रे एमएसपी सीएम किसान योजना रे आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली उन्नतिमूलक योजना सहित मत्स्य उत्पादन और रप्तानी रे ओडिसा रो उल्लेखनीय अभिवृद्धि होईछि
0: ए सब सहित बुणाकार और कारीगर मानू सशक्त करुच्छी मुख्यमंत्री वरिष्ठ बुणाकार और कारीगर सहायता योजना मुख्यमंत्री बयन शिल्प विकास योजना मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भली लोक कल्याणकारी योजना द्वारा लक्ष लक्ष चासी परिवार हेउछंती उपकृत
1: विकासर धारा ओडिसा सारा
2: एथरो सुनंतु कथा चित्र हाफ गर्लफ्रेंड रो ए गीतटी कुमार को गीत रचना रु कंठशिल्पी फरहान सईद एवं श्रेया घोषाल संगीत फरहान साहिद।

0: जय हिंद। गत एक दशंधि मध्यरे आपण एक परिवर्तन देखिछंति कि भारत एबे आतंकवाद उपरे कड़ा प्रहार करुछि, नक्सलवाद संपूर्ण विलोप होइछि। पूर्वरु आमे विदेशरु प्रतिरक्षा उपकरण आमदानी करुथिलु, आजि आमे रेकर्ड संख्यारे सेगुडीकु रप्तानी करुछु। भारत आउ चुप बसिब नाही, भारत आउ सहिब नाही।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 वर्ष विश्वासर, विकासर, जनकल्याणर।
2: आपण मनक पई एथरा कथाचित्र टाइगर जिंदा है र ए गीतटी गायछंति आतिफ असलम, गीतकार इरशाद कामिल, संगीत निर्देशना विशाल एवं शेखर।

0: बने दिल्ली केंद्र रो।
1: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
2: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
3: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information and Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country, in the district and block levels and gram panchayat levels, with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
3: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop, we have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, as the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
2: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: हेलो अनुरोध।
1: जय सीताराम आया। जय सीताराम।
0: जय सीताराम। जय सीताराम
1: आया। रविंद्रनाथ मेहर मौलाकोटा भेड़न ब्लॉक गोड़ जिला में कोज आया।
0: मौलाकोटा
1: आया।
0: मौलाकोटा हमर भेड़न ब्लॉक ना।
1: भेड़न ब्लॉक। भेड़न ब्लॉक।
0: अच्छा अच्छा। आपन का करसन सर?
1: मुई आज्ञा का करमी घरे तो बसी जा नाची नाचिन मन को खेलो जा इटा मोर काम है।
0: अच्छा अच्छा। आ चास बास
1: नाया के चास बास करसू एटा धान तो मुंडी के नोय जाय सर।
0: अच्छा।
1: आओ हमें ठिका देसु बाकी टोकन ना आसबार तेल।
0: ओ टोकन आपन को नुए से हेड है?
1: नहीं टोकन आसी जे बाकी कार्ड ने कोटावर।
0: अच्छा अच्छा। आ बाकी षष्ठी?
1: षष्ठी ता देखी आउ जाय जा संबलपुर इटा हमर ब्रिज पाके महानदी ब्रिज पाके हो जाय। आउ इटा
0: आपन कर है बरपाली भी पार्क टाके जे हाडू।
1: हां बरपाली से आड़ के जितके आर हमर संबलपुर एसकी बोले समझ कहने हम आ गया।
0: हां संबलपुर जाले भी षष्ठी ना आसी ना।
1: हां हां। आउ इटा मानदी ब्रिज पाखा इटा आपन को सोर हला जे टिके फोन लगासी त लागबा कहि जे
0: बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें तो सब बोले टाकी बस छु आपन मान को केते बेला फोन
1: ले। हां हां। हमें भी सुजोग ता आठ दिन थोरै हमको मिलसी।
0: हां
1: आपन मान कर संग दीपक कथा आदान प्रदान हेवार लागी।
0: हां बोले गीत केनता सुनबे आज?
1: आया हमें तो सब थोर अनुरोध करू जो हमर चॉइस रे आज आपन कर चॉइस रे गुटे भल गीत से सुनाई दउना आया।
0: अच्छा अच्छा।
1: और हमर संबलपुर श्रोता मान को समको मोर इडा डेडिकेट है। आ मुई तो इडा से पाटे।
0: हां
1: आ गीतटा बजे दउन हमर श्रोता माने सबे सुनबे मुई भी सुनबे आपन मान कर संगे मोर नाती नातिन माने सबे सुनमा।
0: ले डेडिकेट का की करू जो इडा
1: डेडिकेट हमर सब समस्त श्रोता मान को।
0: अच्छा
1: संबलपुर सुनु दिबार सब श्रोता मान को मुई तो बाटे होछे कारिन ना हार खाना कोइमे आइ मेला न मुई पोलामी।
0: हां सुन सुन षष्ठी देखबे आपन को संबलपुर भी टेकी से।
1: आ जा
0: सुनन सुनन आपनकर गीतटा आपनको बहुत बहुत धन्यवाद आज आपन हमर कार्यक्रम रे शामिल हेबार लागि।
1: हां आज्ञा रहू
0: नमस्कार। आज्ञा नमस्कार।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी न्यूज हेडलाइंस।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मैं तापस रंजन साहू। मयूरभंज जिला रायरंगपुर थाने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भिन्न भिन्न जनकल्याण प्रकल्प है लोकार्पण और शिलान्यास। राज्य सरकार को दुई बछर पूर्ति कार्यक्रम थी जोग देकरी राज्यवासी सपन पूरा करवार लगी गला दुई बछरे सरकार भिन्न भिन्न जनकल्याणकारी योजना करिछन कार्यकारी कहले प्रधानमंत्री। राज्य गला दुई बछरे विकास प्रक्रिया बरकस होती कहले मुख्यमंत्री। पीएम किसान सम्मान निधि योजना थी आज पश्चिम बंग ठाने 18,880 कोटी टंकार सहायता राशि देशर चाषी मानक प्रदान कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पश्चिमबंग दिवस पालन कार्यक्रम थी देले उद्बोधन। जनगणना 2027 पहला खेपे जेन्ती घर तालिका और घर गणना करा जायसी उत्तर प्रदेश रे 100% सफलतार सहायता हला शेष। ड्रग्स टेक्निकल एडभाइजरी बोर्ड रो समीक्षा उतरु देशे 16 प्रकार उषो जेन्ता कि चर्मरोग दरद उषो एंटीस्माजमोटिक आर एंटीबायोटिक आधारित उषो के तुरंत निषेध करवार के सरकार कर तरफ दियागला निर्देश। जन्मदिन अवसर आज राष्ट्रपति को अभिनंदन जनाले प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री केन्द्र शिक्षामंत्री सहित बहुत सियान सुजन। आबा काल विश्व योग दिवस कार्यक्रम थी जोग देवार लगी जबलपुर गस्त करबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आबा काल हेबारके थिबा नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा लगी भुवनेश्वर थाने ओएसआरटीसी आर क्रूड तरफ छात्र छात्री मानक जुगे दिजा महालिया बस सेवा प्रमुख रेल स्टेशन आर बस स्टाण नु परीक्षा केन्द्र के मिलवा ई बस सेवा। ओडिशा और पश्चिमबंग भितर संपर्क सांस्कृतिक ऐतिहासिक और पारस्परिक सम्मान उपर आधारित आज पश्चिमबंग दिवस अवसर सेनर जनसाधारण को हार्दिक शुभेच्छा जनकरी कहिछन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। संबलपुर प्रसिद्ध शीतलष्ठी जात्रार शेष खेपे एछन चलीछे देव दंपती मंदिर गंभीरा प्रवेश श्रद्धालु मान जबर भिड़ सांगे शांति श्रृंखलार सहित चलीछे शेष पर्याय सांस्कृतिक शोभायात्रा। शरणार्थी मानकर प्रति समवेदना और समर्थन जनाबार लक्ष्य आज पालन करा जाउछे विश्व शरणार्थी दिवस। भारत और अफगानिस्तान भितरे चलीछे दिनकिया सीरीजर तीन नंबर आर शेष मैच। पहलानु सीरीज थी भारत 2-0 थी आगे थिला बेलके ताजा खबर मिलवार तक एछेन अफगानिस्तान 218 रन रो जवाब थी भारत दल दुई ओवर थी करिछे 24 रन। एछेन मुखिया खबर शेष हला इतार उत्तर मुखिया खबर सुनिपारबे राति 8 बजे।
0: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र रो।

0: ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନର ବେତାର ବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना।
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

श्रोता बंधु आज तो समय ही जाइछि तेबे आज कार्यक्रम को एठी रखुचु। आज कार्यक्रम प्रयोजना और परिचालना दायित्व थिले दुर्गा माझी एवं उपस्थापन थिली निहारपाड़ा पटनायक। आज विदाय दियंतु, रहुचु, नमस्कार।

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଂଶୀବାଦନ ଶୁଣିଲି ପରିବେଷଣ କରିଥିଲି ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରସିଆ। ରାଗ ଥିଲା ମଞ୍ଚ ଖମାଚ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଶୁଣନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर

0: काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9,00,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लिंक के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले

0: संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन

0: cricket, India completed a clean sweep of the three-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century, chasing a modest 219-run target. India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
2: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा पर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
3: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जैसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
2: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है, वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
3: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थान हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, कि पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब

0: कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टैबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था। तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए और हमारे इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है। और दूसरा, ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रहती कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
1: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
0: इस बार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है, हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन ये साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही कि जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था भरत मंडपम में, दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोनार शहर में हुआ था जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है, उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड की अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाएत करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहां पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
1: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
0: ये योग पार्क का जो पोर्टल है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारे

0: नगर पालिका हो कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे, लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसा एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, बस 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भाई सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेंगी, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे की लोगों को थोड़ा योगा करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहां पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी है कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव योग स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहां पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहां पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है। नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग तक। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर ईयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे हैं।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होंगी योग टीचर योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है तो लोग भी अभी जगह जगह पे जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गांव में हमारे भी, वहां पर लोग फीस देके एक घंटा योगा सीखने जाते हैं या करने जाते हैं कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Interviewer was Deeksha Saxena, Akashvani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Spotlight.

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। यह फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

0: ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को।
1: तो जय जय कर तार, तो जय जय
0: कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बनेगा,
0: और दूसरा गाना था ये।

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: क्योंकि यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

0: सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मी।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया,
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

0: इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी,
1: छोड़ो छोड़ो मेरी भैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मेरी भैया,
0: बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल हैं चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विथ राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन ताल विद द लिरिक्स चलो रे माई राम सिया दर्शन। Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है। और इस सबके बीच ही लोकतंत्र का विकास का उत्सव भी चल रहा है। ओडिशा की बीजेपी सरकार ने अपने 2 साल भी पूर्ण किए हैं। इस मौके पर आप सबके बीच आना, मयूरभंज आने का ये सौभाग्य और इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति, ये अवसर मेरे लिए बहुत खास है। आपका अपनापन मुझे बार बार यहां खींच लाता है। मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ओडिशा की जनता को डबल इंजन सरकार में विकास यात्रा की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, डॉक्टर दमयंती बेसरा जी और श्री चरण हेमरम जी जैसी महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का निर्माण किया था। हमारी सरकार ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। ओडिशा की संतानों को पद्म सम्मान देकर सम्मानित किया है। पिछले 2 वर्षों में ओडिशा सरकार भी इन सभी विभूतियों के सपनों को पूरा करने में दिन रात पुरुषार्थ कर रही है। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बड़ी ओडिशा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। ओडिशा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है, ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे ओडिशा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो इसमें मूल कारण तो लॉजिस्टिक था। लंबे अरसे से यहां आने के लिए चर्चा चल रही थी लेकिन कोई तालमेल नहीं बैठता था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता में तय हुआ तो फिर मैंने कहा अच्छा है, आज बंग दिवस भी है तो क्यों न मैं सुबह मयूरभंज होकर के शाम को फिर कोलकाता के कार्यक्रम में जाऊं। और इसके कारण ये 20 जून तय हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मंगल कामनाएं ईश्वर अधीन होती है और इसलिए आज एक शुभ मंगल हो गया कि राष्ट्रपति जी का जन्मदिन भी मुझे आज
उनके गांव में जाकर के उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। साथियों, आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था, मैं क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया, बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का अवसर मुझे मिला। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता। वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, किसी बच्चे को यह लगा हो कि राष्ट्रपति जी आई है, हर बच्चे को लगता था उनकी मां आई है। ये बच्चे भी बहुत भाग्यवान है, कैसे इस क्षेत्र के गरीब वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है, उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन अनुभवों से गुजरने का आज मुझे अवसर दिया। ये मेरा दिन एक प्रकार से मेरी शिक्षा का दिवस था, कुछ सीखने का अवसर था मेरे लिए। साथियों, मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्य ग्राम सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही ओडिशा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है, वैसे ही पहाड़पुर सूर्य ग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के दो साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। उड़ीसा में आर्थिक गतिविधियां निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है, नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं, पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से
आप सभी लोगों को

0: बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके ओडिशा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों चार द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है उसकी भी मुझे जानकारी मिली है, और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है, यानी स्वच्छता से स्वागत। मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी, इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए हैं जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं, करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि हम मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देशभर में अभियान चलाया, 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे, मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए, जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। उड़ीसा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे उड़ीसा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर उड़ीसा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती उड़ीसा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं उड़ीसा की धरती से पूरे देश से पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर आप सभी को आज के अवसर और विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उनके साथ उनकी कर्मभूमि को देखने का मौका मिला। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
1: ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री निजर भाषण रे गत 2 वर्ष रे ओडिशार उल्लेखनीय अग्रगति संपर्क रे जनसाधारण को सूचना दीथिले।
2: जय जगन्नाथ। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभन पाटी जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव जी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा जी, माननीय मंत्री गृह निर्माण नगर उन्नयन सरकारी उद्योग डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जी, माननीय मंत्री जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन श्रम कर्मचारी राज्य बीमा श्री गणेश राम सिंह खुंटिया जी, माननीय सांसद तथा राज्य सभापति भारतीय जनता पार्टी ओडिशा शाखा श्री मनमोहन सामल जी, माननीय सांसद मयूरभंज नवचरण माझी जी, माननीय सांसद केन्द्रापड़ा तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री वैजयंत पंडा जी, एही कार्यक्रम रे उपस्थित मंत्री सांसद विधायकगण एवं मयूरभंज और सारा ओडिशार প্রিয় ভাই ও ভৌণী মানে জহার গোসাই মারাংবুরু, জহার গোসাই জাহেরায়ু, জহার গোসাই।

0: विकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिससे 2,50,000 नियुक्ति का अवसर मिला है। सरकारी क्षेत्र में भी हम 44,000 से ज्यादा नौकरी भी दिए हैं। हमारे 30 जिलों में से 29 जिलों में उद्योग स्थापित हो रहा है। हमारा शिल्पायन अभियान संपूर्ण रूप से एक समावेशी प्रक्रिया है। मुझे पूरा भरोसा है आगे चल के ओडिशा के लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग नौकरी के लिए ओडिशा आएंगे। ओडिशा के माइग्रेशन नहीं बल्कि रिवर्स माइग्रेशन अभी शुरू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे आलोचक पूछते हैं डबल इंजन सरकार से ओडिशा को क्या मिला है, तो मैं जवाब देता हूं कि 90,000 करोड़ की रेल परियोजना, 40,000 करोड़ की सड़क परियोजना हमको इस डबल इंजन सरकार में ही मिला है। और उसमें उसके साथ साथ हमको एक बहुत बड़ा पोर्ट मिला है, बाहुडा पोर्ट, जिसमें से 25,000 करोड़ को मिला है। उसमें से भी एक जहाज निर्माण करने के लिए, जहाज को रिपेयर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट हमको 25,000 करोड़ के भी केंद्र तरफ से मिला है। और भी और उसके साथ साथ हमको भी एक पेट्रोकेमिकल्स के बारे में IOCL तरफ से भी हमको 80,000 करोड़ की प्रपोजल अभी काम शुरू होने जा रहा है। इसके साथ 5,000 करोड़ की भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप आर्थिक कॉरिडोर भी हमको मिला है। और आज शुरू हो रहा 50,000 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं इसका प्रमाण है। उपस्थित बंधुगण, गत 2 वर्ष रे आपणकर सरकार कायो मनोवाक्य रे आपणकर सेवा करी चली छंती। एही समय मध्य रे अनेक प्रतिबंधक सत्ते राज्यर महिला, गरीब, अन्नदाता, युववर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पछुआ वर्गक पाई अनेक नूतन कार्यक्रम आ योजना मान आम सरकार प्रयोजन करी सारी छंती, जहां फल रे विकासर गति रे तीव्रता आसी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, जीवन जीविका और शिल्प क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आज ओडिशा क्षेत्र में आसी। सरकार उदार शिल्प नीति जगू आज आम राज्य शिल्पपति प्रथम पसंद राज्य भाव आज ओडिशा आपं सामने ढड़ा ही। 2 वर्ष पूर्ति उपलक्षे ओडिशावासी को प्रतिश्रुति दौर राज्य कल्याण आम उद्यम कौन सी प्रकार भी कम हेब ना। आप समस्त उद्यम आम निश्चित भाव 2036 समृद्ध ओडिशा ये लक्ष्य हासिल करिबा पई आमे प्रतिश्रुतिबद्ध एवं ताकू आमे कार्य करि पारिबु। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अभी अभी एक सार्थक G7 सम्मेलन से स्वदेश लौटे हैं। आपके ये गश्त दर्शाता है कि भारत लाइन के लास्ट में खड़ा एक देश नहीं है। आपने पिछले 12 सालों में दिखाए हैं कि इंडिया टाइम ऑन द वर्ल्ड स्टेज हैज फाइनली अराइव्ड। आपके मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके हर कदम के साथ हम कदम मिला के चलेंगे और विकसित ओडिशा, विकसित भारत के सपने को जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। हिरला मारांगबुरु, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जननी।
1: परिशेषरे जातीय संगीत और राष्ट्रगान परिवेषण सह सभा कार्य संपन्न होइतिला। माननीय राष्ट्रपति विदाय नहीं माननीय प्रधानमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुयायी पश्चिम बंगर हुगुली अभिमुखे यात्रा करथिले।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और पर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले

0: प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले दो दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी न्यूज हेडलाइंस।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। रायरंगपुर ठाने 47,000 कोटी अधिका टंकार भिन भिन प्रकल्पर उद्घाटन आउ शिलान्यास कले राष्ट्रपति आउ प्रधानमंत्री। विश्वरे अस्थिरता लागि रहिथिले भिल भारत सबुबेले शांतिर बार्ता नेउछे कहले राष्ट्रपति। ओडिशार अर्थव्यवस्था बरकस हेले भारत शक्तिशाली हेबा कहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। पीएम किसान योजनार 23 नंबर किस्ती टंका प्रदान कले प्रधानमंत्री। 9,44,00,000 नु अधिका चाषी को मिलला 18,880 कोटी अधिका टंका। नीट यूजी पुनः परीक्षा हवा एवाकाल परीक्षा देवे 22,79,000 नु अधिका परीक्षार्थी। देव दंपतिंकर मंदिर प्रवेश संगे सरला संबलपुरर प्रसिद्ध शीतलषष्ठी यात्रा। आवाकाल हेबारे अंतर्जातीय युग दिवस पालन लगे सारा देशे सरला प्रस्तुति। राष्ट्रपतिंकर गाँ के सूर्यग्राम भावे विकसित करा कहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आवाकाल कोलकातार श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदर ठाने स्वदेशी भावे डिजाइन आउ तैयार होता 3 नौसेना जहाज के करवे जलावतरण। झारसुगुड़ा लखनपुर ठाने 25,000 कोटी कोईला बाष्पीकरण एमोनियम नाइट्रेट प्रकल्पर आभासी जरिए शिलान्यास कले राष्ट्रपति आउ प्रधानमंत्री। फेरघाए हरमुज प्रणाली बंद कला ईरान एमओयू उल्लंघन अभियोग आणिकी बंद कला हरमुज। भुवनेश्वर मेहरपल्ली ठाने 300 TPD कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटर आभासी जरिए भित्तिप्रस्तर स्थापना कले प्रधानमंत्री। चेन्नई ठाने भारत आउ आफगानिस्तान भितर चलता पुरुष दिनिका क्रिकेटर आज मैच थी आफगानिस्तान के 9 थी हराला भारत। आउ राइजे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही है इतार प्रभाव थी भिन भिन जिला नई वर्षा आवा 24 घंटा भितर केतरा जगान हालकानु मध्यम धरण वर्षा हे बोली अनुमान कला भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आज मुख्य खबर ने शेष है जुहार।
1: आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करने पूर्व शुणु आगामी प्रचारित होगा कतोटि कार्यक्रम संपर्क सूचना आगामी सका 6:30 ଶୁଣିପାରିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଲକାତାର ରେଡ୍ ରୁଟ୍ରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମନ୍ୱିତ ଗଣଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅପ୍ଟ୍ୟୁବ୍ ଧାରାବିବରଣୀ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସକାଳ 7:10 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି କମିବାର କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର। 7:30 ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଓ ତା'ର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳାନ ଅଜିତାଭ ସାହୁ। 7:55 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କବିତା ମିଶ୍ର। 8:30 ବେତାର ଧାରାବାହିକ ନାଟକ ଫଗୁ ବାପୁଙ୍କ ସଂସାର ରଚନା ସୁରାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଯୋଜନା ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା। 8:45 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଂଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି। 9:00 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଅନୁରୋଧ। 11:05 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତ ଲହର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରବି ରତ୍ନ ବାଗ ଉଷାରାଣୀ ବାରିକ ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର। 11:30 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା। 12:00 ବାତାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 12:30 ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ। 12:05 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୁଃଖିଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ ନମିତାରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପାର୍ବତୀ ଜେନା ଏବଂ ରତ୍ନାକର ରାଉତ। 12:20 ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜି ଗିରିଜା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। 2:45 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ। 3:00 କିଷାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କିଷାନ ଭାଷାର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାକା ଫୁପୁ ଝକାଝକା। 3:30 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ। 4:02 ପୁଣି ଥରେ ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ। ଏ ଥିଲା ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:09:15 ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଚଳିତ ଅଧିବେଶନ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗାମୀକାଲିର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 5:55। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।